0: ਨੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ ਯਾਰ, ਬਹਿਜਾ ਬਹਿਜਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਚੱਕ ਤੇ ਫੱਟੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸੋਰੀ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ 9056733337। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸ਼ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਰਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬਾਈ। ਸਰਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ?
1: ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ।
0: ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸਰਾਸ਼ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨੀ ਜਾਣਦਾ।
1: ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਮੇ ਤੋ ਕਾਮ ਚਾਹੀਏ, ਨਾਮ ਚਾਹੀਏ ਨੀ।
0: ਕਾਮ ਚਾਹੀਏ, ਨਾਮ ਨੀ ਚਾਹੀਏ। आप जब हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हो, ऐसे हो नहीं सकता कि आपका नाम नहीं होगा।
1: हाँ जी, अच्छी बात है, ये बाय प्रोडक्ट है हमारा। मेन है कि सबका काम हो जाए और सब खुश रहे और हमें भी आशीर्वाद दे।
0: वेरी गुड, चंगी गल है। सो सराज थोड़े नाल ने बड़ी मेहनत नाल ते बड़े ऑनेस्टी दे नाल काम कर दिया। सो सराज गवर्नमेंट तो थोनू लोन लेके दिंदा है। ये लोन पहले 2.5 साल 0% ते, कोई ब्याज नहीं, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਸਰਾਸ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ?
1: ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਮੇਂ ਰਹਿਤੇ ਹੈ, ਏਕ ਸਾਲ ਜਿਨਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਓਂਟਾਰੀਓ ਮੇਂ ਰਹਿਤੇ ਹੋਏ, ਯਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਂ ਲੈਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਪੀ ਆਰ, ਕਭੀ ਕਭੀ ਹਮ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਸਪਾਊਸ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਅਵੇ, ਲਾਈਕ ਕਲੀ ਲੈਂਡ ਕਰੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੀ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ ਓਂਟਾਰੀਓ, ਦੈਨ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਲੋਨ ਕੀ ਰੇਂਜ ਹੈ? 50,000 से $1,70,000 ਤੱਕ। आप स्किल डेवलप करते हैं, आसान से कोर्स करते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्स है, इजी है, कोई एज लिमिट नहीं है, हाउसवाइफ है, उबर ड्राइवर, अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड है, स्किल डेवलप करें, फंडिंग हासिल करें।
0: नंबर है सराज दा 4372643175। एंड सराज, कोर्स केड़े केड़े ने? यह एजुकेशन दे लिए लोन ले, ते यह केड़े कोर्सेज ने, ते ऑनलाइन ने, ते पहला दसो
1: जी। ज्यादातर क्लाइंट्स का देखिए, अब ज्यादातर हमारे क्लाइंट हैं अंकल आंटी, पहले ही बच्चों को संभालना इतना मुश्किल होता है, पता ही आपको, मुझे ही पता है, तो इतनी जिम्मेदारी है पहले से ही है इसके इनों में, इसलिए आसान कोर्स वो चाहते हैं जो कि ऑनलाइन है, वो घर के कंफर्ट से कर पाए, करते हैं, पेंशन वाले लोग भी वो भी कर रहे हैं और यंग लोग भी हैं। सो आप ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं, एग्जाम्स नहीं है, सेल्फ स्टडी कोर्सेज है, टीचर नहीं है इसके अंदर, तो आप 20 घंटे हफ्ते में किसी भी टाइम अपने हिसाब से, चाहे आप सिर्फ 2 दिन सैटरडे संडे 10-10 घंटे लॉग इन करें, स्किल भी आ गई, सर्टिफिकेट भी आ गया और साथ में $50,000 से $1,70,000 की फंडिंग बिना कोलैटरल के, बिना क्रेडिट चेक के, बिना सिक्योरिटी के, मेरे नहीं आपके खाते में, डायरेक्ट गवर्नमेंट से।
0: वेरी गुड। एंसर डॉक्यूमेंट के लगते हैं?
1: हाँ जी, आपका NOA हो गया 2025 का, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट हो गए और आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, और मतलब डिपेंड करता है आपके फैमिली साइज पे, अगर फैमिली ऑफ 5 है तो आपको ज्यादा बेनिफिट है। आज भी 2 फैमिलीज थी, वो फैमिली ऑफ 5 थे, तो उनका एस्टिमेट $178,000 का आया है, तो विद इन आप मान के चलें 2 महीने में उनको पहली किस्त गिर जाएगी इस अमाउंट की, और अगर फैमिली ऑफ 2 है तो अराउंड $70,000। तो आप हमें अभी भी कॉल कर सकते हैं, एस्टिमेट ले, एंड हमारे ऑफिस आए हरनटोरी डेयरी पे, कल हरनटोरी डेयरी पे 218 एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे आए, रजिस्ट्रेशन कराएं।
0: ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਰਾਜ ਦਾ 4372643175। ਤੇ ਅਪਰੂਵਲ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ?
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਲਾਇੰਟ ਕੇ ਪਾਸ ਪੂਰਾ ਐਕਸੈਸ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਉਨਕਾ ਕਬ ਅਪਰੂਵਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਬ ਉਨਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਸ ਡੇਟ ਕੋ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਮੇਂ ਆਏਗੀ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। और बाकी आप जब आते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आपकी फाइल बनती है, आपको तो एक्सेस होता है उसके पास। आप ये मान के चले टेक्निकली 2.5 महीने लगते हैं मैक्सिमम, बट हम 2 से 3 महीने बोल के चलते हैं क्लाइंट को, और आज भी 8 से ज्यादा बंदों के फंडिंग में उनके खाते में डायरेक्ट गिरी है। आप पीछे ना रहिए, गवर्नमेंट अभी कट्स ना कर दे इस चीज में, अभी एनरोल करें, पीछे ना रहिए, बाद में क्या पता गवर्नमेंट जैसे अपने एयरपोर्ट्स बेच रही है, यहां भी कुछ कट्स कर दे।
0: एंड लास्ट वीक सम अप कर दो, थोड़ी कितनी फीस है ते कदों देनी है?
1: हाँ जी, काम होने के बाद 199 फीस है, जैसे आज 8 बंदों की फंडिंग गिरी है, 8 से ज्यादा, तो अब उनके में से 5 का इंटरेक्ट मुझे आ चुका है, बाकी 3 कल या परसों कर देंगे जैसी उनकी इच्छा। तो हमने तो सब ट्रांसपेरेंट रखा है, फीस हम अपनी छोटी सी रखते हैं, अगर हमारी कमीशन होती, परसेंटेज, कोई चलाकी होती, कोई मीठी बातें होती, हम रोज रोज शोर मचाते ही ना, आराम से 5 क्लाइंट करते और सो जाते, बट नहीं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 8 साल में हजारों को असिस्ट कर चुके हैं। 199 फीस काम होने के बाद नंबर 437-234-31-75 437-234-31-75 हमें कॉल करो 437-264-3175। स्टाफ रेडी आपकी कॉल के लिए।
0: नंबर एक बार फिर
1: 437-234-31-75 437-264-3175।
0: वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू,
0: थैंक यू जी। 8205 हेलो।
2: हाँ जी, सत श्रीकाल नवी जी।
0: सत श्रीकाल जी, किवें हो?
2: वधिया वधिया। अच्छा, मैं गड्डी इंडिया बहुत चलाउणा है, मैं देख लो हिसाब ला लो, जो कश्मीर लैके गड्डी गया सी पटियाले तों कश्मीर, ਤੇ ਮਨਾਲੀ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਗੱਡੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੱਡੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੱਖੀ ਉੱਥੇ ਪਰ।
0: ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਕਿੱਥੇ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ?
2: ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਰੂਲ ਹੀ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਲੈਟ ਆਈ ਆ ਫਿਰ ਰੈਡ ਉੱਥੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਸਟੋਪ ਸਾਈਨ ਨੀ ਲੈਂਦੇ।
0: ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ? ਚਲੋ, ਦੱਬ ਲੈਣ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਆ, ਇਹ ਉਮਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ।
2: ਨਹੀਂ
0: ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਿਯੋਂਡ ਆਈਵਰ ਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਨਕਾਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਯੋਂਡ ਆਈਵਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 9057933937। ਆਈ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਰੋਮੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨੰਬਰ ਹੈ 9057933937 ਬਿਯੋਂਡ ਆਈ ਵੇਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਿੱਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ, ਵਾਸ਼ਰ ਡਰਾਇਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਪਣਾ 6476223203। ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 6476223203। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਬੈਕ।
3: ਦਿਸ ਇਜ਼ AM 530 CHLO AM ਐਂਡ ਐਵਨ ਆਫ

कार कमर्शियल या इंडस्ट्रियल हर किस्म दी पेंटिंग विच माहिर अज ही कॉल करो BDS पेंटिंग दे जुगराज सिंह होना 905-965-6311 905-965-6311

ब्यूटी इंडस्ट्री थी दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो तो हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तो हाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही रहा जो प्रोवाइड करते हैं सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ये सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले भी जाने जाते हैं। हुने कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुन छूम अंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको थां ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लघु शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cashandcarry2023@gmail.com ते। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसे लई तुहाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फुट हाउ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा बुफे, डाइन इन, टेक आउट, केटरिंग, लंच दे डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स दे स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ Brampton.

0: स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल। इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए। अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे कोई भी रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेबल होगा, तो फिर आज ही स्टीफन फर्नीचर आए और अपने घर को स्टीफन फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांडेड फर्नीचर पे बड़ी बड़ी डील्स का फायदा जरूर उठाएं। सर्विंग सिंस 1992, फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल। टू लोकेशंस टू सर्व यू, 2575 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट ब्रैम्पटन, 9057900560, 6 मार्कोनी कोड बोल्टन, 9059519394। स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन से
1: किचनर विच शानदार कामयाबी तो बाद पंजाबी आर्ट्स एसोसिएशन हुण ब्रैम्पटन विच लेके आए ने बाली भुपिंदर दा लिखिया अते डायरेक्ट कीता नाटक जस्सू पुत। 10 अक्टूबर ब्रैम्पटन दे रोज थिएटर विखे। टिकटां ते वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-677-1555। पंजाबी आर्ट्स एसोसिएशन दी पेशकश बाली भुपिंदर दा लिखिया ड्रामा जस्सू पुत। टिकटां सिर्फ $15 अते $20। कॉल करो 416-677-1555।

0: टीका टिप्पणी होवेगी, चलंत मुद्दिया ते मसलिया ते
1: तिरछी नजर रवेगी, कनेडा ते दुनिया दी सियासत ते
0: छह पर लगेगी नवे पुराने गीता दी
1: बाता होनगिया सभ्याचार ते अमीर विरसे दिया
0: सुनना जरूर लाइव शो विद शमी पठल 5:30 AM ते सोमवार तो शुक्रवार
1: बिजनेस दी प्रमोशन ली आज ही कॉल करो 416-917-7073 416-917-7763

0: Mohan. Contact us at bridgemohan.com.
1: सेंट्रल मिसिसागा दे रहन वाले हो ए मौका ना गवाओ बैलीमोर होम्स वालों डेरी लेन टाउन्स जल्द ही डेरी रोड वेस्ट अते हरंटेरियो ते आ रहे ने कंटेम्पररी टाउन होम हाई $700,000 तो शुरू हो रहे ने सीमित समय ले एचएसटी दे विच खास बचत दा फायदा लो हाईवे 401 407 अते 410 गो ट्रांजिट शॉपिंग अते पियर्सन एयरपोर्ट तो सिर्फ कुछ मिनटा दी दूरी ते सब तो पहले बायर्स दे विच शामिल होण दा मौका ना गवाओ अज ही रजिस्टर करो ballymorehomes.com BALLYMORE homes.com

0: license?
1: No.
0: Police officer?
1: No.
0: Traffic lights?
1: No.
0: Done.
2: Diamond Insurance ਦੇ ਪਵਨ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਇੰਟਰੀਅਨਸ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਿਨਿਊਅਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਵਨ ਕੌਰ ਗਿੱਲ। 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਤੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਟੋ, ਹੋਮ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ। 647-325-9900 6473259100 ਪਵਨ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਫਰੋਮ ਡਾਇਮੰਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ।
3: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸੁਹਾਨਾ।
4: यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है, ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है, बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे ने, ते कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे ने, जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जांदी है। पर कनाडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस दे लई लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इनसॉल्वेंसी प्रोसेस। तुहानू डेट नू प्रॉपरली असेस करन, मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाण विच हेल्प करदे ने। इस प्रोसेस नाल तुसीं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच ले आ सकदे हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200 416-518-3200।

0: फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: ए टू जी किचन कैबिनेट भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार कर रहे हैं लकी भाजी दी बनिया किचन कैबिनेट देखे गुआंढ भी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन शीशे नाल भरिया किचन कैबिनेट वास्ते डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते ए टू जी किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 ते कॉल कर सकदे हो
2: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
3: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 905-460-8888 दैट्स 905-460-8888
2: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
4: जब HK Movers का हो साथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात HK Movers होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल वी आल्सो शिप कार्स वी आल्सो डू स्टोरेज 30 इयर्स एक्सपीरियंस वी सर्व विद अ स्माइल HK Movers गिव अस अ कॉल मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704 416-524-6704
5: हैसल फ्री मूविंग के लिए HK Movers
6: कि तुसी भी अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स नो सुपर वीजा या विजिटर वीजा ते कनाडा लेके आ रहे हो ते फिर प्लैनेट इंश्योरेंस तो सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर इंश्योरेंस प्लान लेके उन्हां नू प्रॉपरली प्रोटेक्शन दियो साडे अप्रूवल फास्ट ने कवरेज तुहाडी नीड दे मुताबिक है ते कॉम्प्रीहेंसिव प्लान है जिहड़ा ए सारा कुछ तुहानू मिल सकदा है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस ते तुसी मैनू कॉल करो एदे लई नंबर है 416-524-3535 416-524-3535 विधि छाबड़ा फ्रॉम प्लैनेट इंश्योरेंस
7: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी हुण जदों भी तुसी कैनेडियन इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तां ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दीयां चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ चाहे 15 फैंडोवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बम रोड टोबीको। वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165।
1: इंतजार हुण खत्म होया। रीमैक्स गोल्ड रियल्टी दे गौड़ी खुमान लेके आए हैं साउथ कैलडन विच प्रीमियम रिटेल अते ऑफिस स्पेस खरीदण दा एक होर सुनहरा मौका। पेश है कैलडन कमर्शियल सेंटर हाईवे 10 अते हाईवे 410 दे प्राइम इंटरसेक्शन ते 15 एकड़ विच बन रहा एक नवा कमर्शियल डेवलपमेंट। रिटेल अते ऑफिस यूनिट्स हुण सेल लई अवेलेबल हन। कैलडन दी इस नवी कमर्शियल डेस्टिनेशन विच अपनी स्पेस अज ही पक्की करो। अपनी यूनिट अज ही बुक करन लई साडी टीम नाल कॉन्टैक्ट करो।
2: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
3: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नो मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानु सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो कर दी है ते कवरेज इंक्रीज कर दी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500।
4: मैं हरसिमरन सिंह। साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रहियां ने। पुलिस पैरामेडिक्स रीजनल रोड्स पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है। वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर। आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज, वोट हरसिमरन सिंह।
5: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
6: आज
7: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नू वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है। ते नाले टिलो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिदा। भाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
8: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
7: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com। होर कोई सेवा।
9: दोस्तों मैं रविंदर वडाली ते मैं आ रहे जी 11 अक्टूबर नूं टोरंटो रोज थिएटर दे विच तुहाडे अपने शहर तुहाडी डिमांड दे
10: हां बदनाम करती नाले मैं ते क्यों दी मिठी चोरी
9: ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए enbridgegas.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।
2: माखियों मिठी बोली वर्गा ते सौ रंगां दी होली वर्गा न्यूज व्यूज गीत संगीत हास्य ठट्ठे दे लेके रंग तहाड़े रूबरू

0: that insuranceforyou.ca.
1: दोस्तों देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो एम 5 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नूं सुनन वास्ते जां देश प्रदेश नूं लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नूं www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो जे वाच करना चाहुंदे आ तां ओह ते क्लिक करो जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो ओहदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नूं क्लिक करो ओहते तुसीं सुन भी सकदे हो वेख भी सकदे हो 24/7 दुनिया दे किसी भी हिस्से विच उड़ान भरन तों पहला एक नाम याद रखो कोमल ट्रैवल एंड टूर्स डेस्टिनेशन बैडिंग करनी है शिप क्रूज ले जाना है जां फिर किसी आइलैंड ते हॉलीडेज वास्ते बुक करना है पैकेज तां कोमल ट्रैवल इंडिया पंजाब लई डायरेक्ट फ्लाइट बुक करन वास्ते हुणे कॉल करो कोमल ट्रैवल वालियां नूं 905-238-7011 905-239-7711 कोमल ट्रैवल एंड टूर्स
2: Solution to promote your business. Desh Pardesh, Prime Time Radio and TV. Tohade ang sang 24 ghante satto din. Hun tak Desh Pardesh Prime Time Radio hazara hi business di grand opening live on location nal karwa chukya hai. Te karwa rya hai. Impossible is nothing. Tusi bhi apne business vich vada karan waste Desh Pardesh Radio da live on location Friday Saturday karwao. For bookings call Tejinder Sidhu at 416-725-2551 416-725-2551
1: ਸਸਤੀ ਗਰੋਸਰੀ ਔਰ ਹਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੱਤ ਸ਼ਿਖਾਮਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੂਟ ਲੈਂਡ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਦੀ ਤੰਦੂਰੀ ਗ੍ਰਿਲ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਬਣਿਆ ਹਰ ਫੂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਹ ਮੀਟ ਵੀ ਔਰ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਮੀਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਓ 45 ਡਸਕ ਡਰਾਈਵ 15 ਫੈਂਡਰਵੇ ਬ੍ਰੈਂਟਨ 9985 ਮਕਵੀਨ ਡਰਾਈਵ ਬ੍ਰੈਂਟਨ 1465 ਮੇਫੀਲਡ ਰੋਡ ਬ੍ਰੈਂਟਨ 33 ਫਾਰਲੀ ਡਰਾਈਵ ਗੋਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ और 600 हैस्कुलर रोड कैम्ब्रिज नमी खुली ब्रांच 25 सेंट्रलवुड पार्कवे कैनेडी के सेंट्रलवुड पार्क के नेड़े आओ हरिया ताजिया सब्जियां और जी सस्ती ग्रोसरी वास्ते पहुंचो इंडियन फ्रूट लैंड से
3: Hello AM 530 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ
1: ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-564-6444

0: ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਪੂਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਯੂਨੀਕ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇੰਕ ਤੋਂ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਨਸ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟਡ ਲੋਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੋਨਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
0: ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟਡ ਲੋਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਲੋਨਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਲੋਕ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਇਸ ਲੋਨ ਦੇ ਲਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ।
1: बिल्कुल जी, गवर्नमेंट आपको लोन दे रही है और आप स्किल डेवलप करते हैं, फंडिंग हासिल करते हैं, 50,000 से 1,70,000 डॉलर तक का लोन है। क्यों दे रही है? क्योंकि आप स्किल डेवलप कर रहे हैं, आप 20 घंटे हफ्ते में अकाउंटिंग या बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, टीचर्स नहीं है, इजी असाइनमेंट्स हैं, एग्जाम्स भी नहीं है। ज्यादातर हमारे क्लाइंट्स अंकल आंटी हैं, 40-50 साल के हैं, और फुली ऑनलाइन, आपने कहीं नहीं जाना, घर के कम्फर्ट से आपने क्लास लगानी है, मतलब वही ऑनलाइन 20 घंटे पर वीक, और आप 50,000 से 1,70,000 हासिल करते हैं बिना गारंटी के, बिना कोलैटरल के, बिना किसी क्रेडिट चेक के। ऐसा लोन आपको धरती पे कहीं भी नहीं मिलेगा।
0: बिल्कुल। ते सराशी, जड़े ही फंडिंग मिल दी है अपन, उन्हें ऊपर कितने कितने स्पेंड कर सकते हैं, ते सब तो ज्यादा फायदा किन हुंदा है?
1: हाँ जी, इसको आप कहीं भी कैसे भी अपनी मर्जी से खर्च करते, गवर्नमेंट आपको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए कवर करने के लिए फंडिंग दे रही है। किसी के लिए ग्रोसरी करना, किसी के लिए बैक होम भेजना। अब आप मान के चले, इसमें ज्यादा बेनिफिट उनको जिनकी फैमिली इनकम नोटिस ऑफ असेसमेंट पे लेस देन 100,000 डॉलर है, पीआर है, सिटीजन है, प्रोटेक्टेड पर्सन है, एंड अगर मैरिड विद किड्स है, फैमिली ऑफ 4-5 है, तो अराउंड 168,000 डॉलर, 178,000 डॉलर तक की फंडिंग आपको अप्रूव होती है। ये लोन की 2-3 खास बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ। अगर आप 2 साल का कोर्स करते हैं फैमिली ऑफ 4 में, हस्बैंड वाइफ दोनों, 1.5 लाख उनको बनता है फंडिंग का।
0: अब
1: सबसे बड़ी बात, जो टर्म्स है इस लोन के, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते कहीं और। नंबर 1, 2.5 साल तक के लोन, 2 साल का कोर्स है, ऑनलाइन आसान है, एग्जाम्स भी है, 2.5 साल तक के लोन 0% है, मतलब ब्याज ही नहीं है उसके ऊपर। पहली किस्त कब स्टार्ट है? 2.5 साल के बाद। तब ब्याज कितना है? 2.5% पूरे साल का, मतलब $1,00,000 का ब्याज सिर्फ, $2,500 पूरे साल का, महीने का $200। गारंटी के बिना लोन है ये, और इसमें मतलब अगर घर की मोर्टगेज 2500 है तो 1500 तो ब्याज जाता है, क्योंकि 20-30 साल। यहाँ पे ऐसा नहीं है आपकी 400 किस्त बनती है तो उसमें से $100 ब्याज जाता है पूरे 15 साल।
0: जी,
1: वेट ना करें, कॉल करें, असेसमेंट कराएं, और इसमें कोई भी हिडन चीज चलाकी नहीं है।
0: सराशी, कोर्सेज दी थोड़ी लिस्ट दो कि कोर्स केड़े-केड़े नेगे जड़े ऑफर किए जाते हैं।
1: हाँ जी, ऑनलाइन सोके जो कोर्सेज है जी, बिजनेस अकाउंटिंग मेन पॉपुलर है बिजनेस, क्योंकि वो 2 साल का है, फंडिंग डबल आती है, लोन डबल आता है, गवर्नमेंट आपको पता है हर जगह कट्स कर रही है। आप गवर्नमेंट तो अपने एयरपोर्ट भी बेच रही है, पीछे ना रही है, यहाँ से भी इन्होंने कट्स कर देना थोड़े टाइम में। आपके सारे आस पड़ोस वाले लोन ले चुके हैं, इन्वेस्ट करें, कुछ भी करें इस लोन का, हम सब पे इस दुनिया में लोन तो चढ़ा ही हुआ है, तो एक इस लोन से दूसरे लोन भी लोग उतारते हैं। हम बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड 22% पे था, ये लोन 0% पे, हमने वो भी उतार दिया। तो इसलिए हमारी फीस कितनी है काम होने के बाद? 199 है, कुछ भी हिडन नहीं है। कल भी 8 बंदों की फंडिंग गिरी, अभी तक 4 बंदों की फंडिंग उनके खाते में 2-2 हो चुकी है। पीछे ना रहिए, हमारी फीस तो पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट है, कोई चलाकी मीठी बातें नहीं है, प्रॉपर ऑफिस, 6 बंदे आपके लिए काम कर रहे हैं, 218 एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे, नंबर 437-234-3175, न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप 1.5 महीने में फंडिंग आपके खाते में आ जाती है, लेट ना करिए। 437-234-3175, 437-234-3175, 437-234-3175।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया सारांश जी, जरूर तुसी गलबात कर सकते हो यूनिक ग्लोबल एडवाइजरी इंक तो। सारांश नागपाल जी सन लाइन ते जुड़े हुए सी। अगले कॉलर 6643, हां जी सत श्री अकाल।
2: हां जी मनप्रीत जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਚਾਹੀ ਗਲਾ ਜੀ।
0: ਹਾਂ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ?
2: ਹਾਲ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੋਨੀ ਪਾਵਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ।
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦੂੰਗੀ
2: ਪੈਰਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਯਾਰ ਦੀ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜੂ ਵਿਚਾਰੇ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਨਾ,
2: ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ।
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ
2: ਦੂੰਗੀ
0: ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗਾਣੇ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ 905-564-4444, 905-564-6444 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ 4-5 ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੀ ਬਾਬਲਾ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਗਾਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੇ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੰਦਰੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ।

0: 530 CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: 647-302-1322 येलो टायर सेंटर से एक चक्कर लगाओ। तानू मान है कनेडियन होन दा, ये कनेडियन होन दे नाते सोफा मार ते कैसा लेदर जड़े के इको ओनर ने और कस्टम मेड सोफे तैयार कर देने कनेडियन मेड। अपने कर दे लिविंग रूम दी गारंटी मेंटी करके लेके जाओ ते हर साल सोफा तैयार करवाओ। चार सीटा वाला, पांच सीटा वाला तुहाडी अपनी मर्जी है। 11x11, 10x10 दा सोफा तैयार करवा सकते हो। इन्हां दी फैक्ट्री है 120 डेल्टा पार्क, उत्थे बहुत बड़ा शोरूम है। पहला शोरूम है 24 रीगन रोड, ब्रैम्पटन। नंबर है परमजीत कौर खुरंदा 905-792-8053, 905-792-8053। सोफा मार्ट और कैसा लेदर इको ही कंपनी का नाम। तुहाडियां कारां दी तसल्ली बख्श मरम्मत लई ANJ ऑटो रिपेयर बोल्टन दे विच हन। हर मेक ते मॉडल दी कार दी रिपेयर कीती जांदी है। सेफ्टी इंस्पेक्शन, फ्री एमिशन टेस्ट, न्यू ते यूज्ड टायर पवाओ, रस्ट प्रूफिंग दा काम, ऑयल चेंज, ब्रेक जॉब, ट्रांसमिशन, इंजन दा कोई भी काम होवे, अज ही अपनी कार नूं लेके आओ। हाईवे 50 ते मेफील्ड दे नेड़े, नंबर 91 हेली रोड और होम डिपो दे नाल अज ही कॉल करो परमिंदर सिंह होरां नूं 905-857-75-96, 905-857-7596। ANJ ऑटो रिपेयर, जेड़े के बोल्टन अते ब्रैम्पटन दे बॉर्डर ते ने। मॉर्गेज ब्रोकर राहुल ग्रेवाल दा ऐलान कि तुहाडी मॉर्गेज पहला बी लैंडर ना होई हुई है, यानी कि प्राइवेट होई हुई है, बद्ध तों बद्ध तुसीं मॉर्गेज पे कर रहे हो, तां तुहाडी मॉर्गेज हुण ओह ए लैंडर नाल, यानी बैंकां नाल करवा देणगे, ते तुहाडी जिहड़ी मॉर्गेज आ ओह सस्ती हो जाएगी। इस तों इलावा तुहानूं सैकंड मॉर्गेज चाहीदी है जां फिर तुहानूं जल्दी जल्दी 30,000 तों लैके 5 लाख चाहीदा, बहुते कागजां दी लोड़ नहीं, फटाफट तुहानूं मिल जाएगा। होम लाइन ऑफ क्रेडिट बनाउणी है जां फिर कमर्शियल जां कंस्ट्रक्शन लोन चाहीदा, तां अज ही करो कॉल राहुल ग्रेवाल नूं 647-640-2511, 647-640-2511 ते कॉल करो। मॉर्गेज ब्रोकर राहुल ग्रेवाल।

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- कैनेडा दे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सलूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
2: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग ले
3: ऐसे ले मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते
2: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है ता तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
5: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpradeshradio.com ਜਾਂ www.deshpradeshtv.com ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7

0: फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: मॉर्गेज दी दुनिया दे विच चमकदा सितारा प्रभदीप सिंह ई ताडी मॉर्गेज रिन्यू होण वाली है तुसी प्राइवेट मॉर्गेज स्टक हो गए हो ते वध इंटरेस्टेड पे कर रहे हो ए ताडी मॉर्गेज बैंकां नाल करवा के लो इंटरेस्टेड ते गारंटी नाल करवाउणगे ते नाल दी नाल लाइन ऑफ क्रेडिट भी ताडी बनवा देणगे ते $3500 तुहानू कैश वापस भी दित्ता जाएगा जां फिर बिजनेस लोन लैणा जां लाइन ऑफ क्रेडिट बनाउणी है अज ही कॉल करो प्रभदीप सिंह 416-710-7524 416-710-7524 ते प्रभदीप सिंह होरां नू कॉल करो
2: Solution to promote your business. Desh Pradesh Prime Time Radio and TV. Tohade Angsang 24 Ghante Satto Din. Hun tak Desh Pradesh Prime Time Radio hazara hi business di grand opening live on location nal karwa chuke hai. Te karwa rya hai. Impossible is nothing. Tusi vi apne business vich vada karan vaste Desh Pradesh Radio da live on location Friday Saturday karwao. For bookings call Tejinder Sidhu at 416-725-2551 416-725-2551.

0: सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए enbridgegas.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.